ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूब सुरत सुरत ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाह वाह।

हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हूँ सुन गए जी। हाँ जी सत श्रीकाल जी। बहुत वधिया जी, बहुत बहुत बहुत वधिया। तुसीं सुनाओ किदां, प्रवास रेडियो दा की हाल आ, बाकी सारे साथियों दा की हाल है, किवें चल रहा? हाँ जी बिल्कुल सही गल है, बहुत पाएदार गल्लां कीतियां सारियां जी। तुसीं एक गल्लां साडे समाज दे विच, मेरा ख्याल है साढ़े जी जींदियां जी, तो मैं मेरा ख्याल ही साथे देख हूँ, बाकी बाद चाहिए तो पता नहीं। समाज सुधरता नहीं है जी बाजवा साहब, गल ये है भी जिन्ना मर्जी तुसी जोर ला लो, जिहड़ा इन्हां दा दिमाग आ जां तां साडा कमजोर है जां इन्हां दा तेज आ। हाँ जी कोई ना कोई है वो गल। समझ ही नहीं आती। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मेन मेन बाजवा साहब गल ये है ना, जेडे साडे लीडर आ, धार्मिक लीडर आ जां कोई उदां लीडर आ, ओहो बंदिया नू मगर लाउण वेले तां कुछ होर स्पीचां करदा, जदों उहनू पता लग जांदे हुण मगर लग पए तां फिर डेरिया नू लै जांदा। हाँ जी ते सीधे रास्ते पाउण दी बजाए उन्होंने मतलब मेहनत तो कढ के भिखारियों च पाउंदा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुण आपां देखो इत्थे जिहड़े सोशल लेंदे आ पहने जां कोई होर आ, उन्हां नूं आपां किन्ना चंगा समझदा कोई उन्हां नूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी इदां इदां इदां जी। बहुत बड़ा जी बहुत बड़ा जी जी जी

हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। बाजवा साहब, मेरी आवाज मेरी सही सुन दी तुम? ओके, ठीक, अच्छा, ठीक, हाँ जी। जी, मैं तुहानू एक गाना ही सुनाऊंगा, साडे कुलविंदर सिद्धू साहब कामेके दे एक बहुत बड़े वधिया लिखारी आ, बहुत सोहणियां गल्लां लिखते आ। उन्होंने एक गीत लिखिया सी, जिंदगी दे गीत नू तू गाई चल दोस्ता। गड्डी चलदी आ जिवें चलाई चल दोस्ता। हाँ जी, बहुत सोहणी गल लिखी है। हलो, मैं तुहानू अर्ज करदा, मतलब बिना साजां तो सुनाऊंगा मैं, क्योंकि अजे तक मेरा सिस्टम जिहड़ा वो नहीं बना।

विंदरा नाले ने बंदूका बॉर्डर उत्ते जाना। कुल बिंदरा नाले बंदूका

0: वाह बाली जी, जिस तरह मैं पहला एक बार शायद क्या ही तुम वाहवा रियाज करके आए हो, पहला नालों तुहाडी आवाज होर परफेक्ट हुई है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहाडा तुहाडे कन्न बड़े स्रोत सुनन वालियां दे बहुत ही मिठे आ और सुनदे आ, मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जेडे मेनू इना हौसला दिंदे आ। तुहाडे हौसले नाल ही फिर बंदा होर अगे उडारी मारन की कोशिश करता, जिदा प्रवास ना ही रेडियो आया ते इह तां बड़ा ही इस गल का मेरे लिए एक की कहंदे आ निशाना आ, मेरे लिए एक बहुत वधिया और मेनू सेध देण वाला सारिया तो वधिया रेडियो दा। अगर मैं सुनदा बहुत ध्यान रेडियो जाना भी कई थे कई बार, पर जो कुछ तुहाडा सुनेहा जनता नूं जांदा ओह मैं कदे आम दूजे तो नहीं देखिया। बहुत वधिया सारे प्रोग्राम करदे आ, किसे दी मैं दूजा नहीं करदा, पर तुहाडी सिफत जिहड़ी बनदी आ ओ मेरा दिल रुकदा नहीं, गल जवान आउंदी आ ओ कहनी मेरा फर्ज भी बनदा और मैं कहंदा भी आ। बहुत वधिया बहुत वधिया सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़े इत्थे आउंदे आ ते जिन्ने भी स्रोते आ। सॉरी मैं किन्ने चिर तो नहीं अटेंड कर सकया,
0: कोई नहीं तुसी बिजी सी, कोई गल नहीं कोई नहीं, हुण तुसी कोल आ गए साडे, हांजी हुण रौनकां लाया करांगे हर वीक ते
1: ठीक है जी। हांजी मेरे वालों फिर सारिया नूं बहुत बहुत
0: थैंक यू। मैं ना तुहाडे नाल दो चार लाइना करांगा के नेरा होए जमाने विच नेर पै जाए,
1: वाह वाह,
0: पर रात दी रानी दे नेरे विच फुल खिल दे,
1: वाह वाह वाह वाह क्या बात है, सही
0: गल, रात दी रानी दे नेरे विच फुल खिल दे, प्यार भी होणिया लई चढ़ जे दिन जांदा ते विच नेरे दे यारां नूं यार मिल दे,
1: वाह वाह वाह क्या बात मारी,
0: प्यार भी होणिया लई चढ़ जे दिन जांदा ते विच नेरे दे यारां नूं यार मिल दे, चोरां यारां लई आ बहार जांदी
1: जी,
0: ते डिस्को पबां विच दिलां नूं दिल मिल दे,
1: वाह क्या बात है,
0: यार दी शो बदन दी खुशबू रूह विच लो, भाई नेरिया तेरा क्या कहना, सानू नेरे चो स्वर्ग दा राह दिसदा, ऐसा दिन दे चानण तो की लैणा,
1: वाह जी वाह क्या बात,
0: सानू नेरे चो स्वर्ग दा राह दिसदा, ऐसा दिन दे चानण तो की
1: लैणा, क्या बात है क्या बात
0: जी, बहुत बहुत मेहरबानी साडिया शुभकामनावां तुहाडे नाल तुहाडे परिवार नाल सारे नाल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरे वालों सारे
0: हिस्सा लिया सोहनी गलबात सानू अपना गाना सुनाया ते साडियां शुभ शावां एक बार फिर तुहाडे नाल ते इहो ही मुलाकात हुंदी रहा करेगी साडी।
1: ओके जी थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद, अंके चंगी जर्मन दी भाषा जी, ओके
0: ओके बाय
1: बाय।
0: दोस्तों ए सी साडा अज दा प्रोग्राम, ते अज मेरी कोई सेहत भी ठीक नहीं सी इन्नी, पर मैं जोर ला के ही अपना प्रोग्राम कर रहा, मैं चक्कर आ रहे ने, दो दो घड़िया नजर आ रही ही सामने टाइम दे सामने, ते मैनू समझ नहीं आती मैं खब्बी घड़ी तो टाइम वेखा के सज्जी तो वेख फिर एनी हो तुहाडे प्यार दे नाल हौसला मिलया, गल्लां चो गल्लां लभदियां होया टाइम निकल देगा दो घंटे का पता नहीं लगा, ते अगले वीकेंड ते फिर छाल मार के हाजिर होवांगे जी सैटरडे संडे, ताडा साथ इदां ही चलेगा ते मौजां ही लगियां रहणगियां, ते असीं भी सेहतमंद महसूस करदे रहांगे। देशां विदेशां च सुण रहे सारे सज्जणां मेरे तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल, आल सलाम अलैकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग all the lovely and sweet people of this planet.

मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतो, ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा,

वाह जी वाह, वाह बहुत खूबसूरत गाना, वंडरफुल आवाज। सो ये सन जी आसा सिंह मस्ताना जी हुणी। ते दोस्तो मैं हुण तुहानू एक अपनी रचना सुनावांगा, ते हुण तुसी मिस कॉल मार सकते हो, रचना तो बाद मैं तुहाडे कोल हाजिर हो जाऊंगा। जो अखां रा पिलाई जांदी उस शराब दा ना ते दसो, जो अखां रा पिलाई जांदी उस शराब दा ना ते दसो, जो प्यौंदा रहे पर पीवे नहीं उस तो वड्डा बदनाम ते दसो। रिश्तियां तो उपर रिश्ते जेड़े, अर्जा जी रिश्तियां तो उपर रिश्ते जेड़े, उस रिश्ते दा ना ते दसो जिस दिल विच प्यार ते रहम ना होवे, उस तो भैड़ा हैवान ते दसो। रिश्तियां तो उपर रिश्ते जेड़े, उस रिश्ते दा नाम ते दसो जिस दिल विच प्यार ते रहम ना होवे, उस तो भैड़ा हैवान ते दसो। जो दिल दी दुनिया फना ही कर दे, उस तो वड्डा तूफान ते दसो। जो दिल दी दुनिया फना ही कर दे, उस तो वड्डा तूफान ते दसो। जग जिसनू जगह दिल विच दे दे, उस तो वड्डा सम्मान ते दसो। भाई जग जिसनू जगह दिल विच दे दे, इस तो वड्डा सम्मान ते दसो। जो मां बाप नाल ध्रो कमावे, ओए उस तो वड्डा बेईमान ते दसो। जो मां बाप नाल ध्रो कमावे, उस तो वड्डा बेईमान ते दसो।

0: दोस्तों, ये सन दरवेश कलाकार यमला जग जी।
1: क्या बात है, बड़े पुराना गाना मैनु एक लब्बा सी ते मैं सोचा भी क्यों ना तुहाडी खिदमत विच भी पेश कीता जाए। उम्मीद है कि तुहानू पसंद आया होगा। सो दोस्तों, मैं एक अपनी रचना तुहाडे नाल सांझी कर रहा ते तुसी मैनु एक कॉल मार छड्डियो, मिस कॉल, ते मैं अपनी रचना तो बाद तुहाडियां लाइना खोल देंगा ते तुहाडे नाल गलबात करनी शुरू करांगा। रब्बा सोहणिया सामणे आ, पर रब्बा सोहणिया सामणे आ, लुक लुक के ना जिंद तरपा, आ विचोले अपने करके लांबे। ठीक है जी। रब्बा सोहणिया, सुभा सिंह जी, मैं अपनी रचना सुनावा, मैं आया तुहाडे नाल। दोस्तों, बहुत ना एक शशो पंजी जी नहीं, कोई अद्धी दुनिया कहती है जी रब ना दी कोई चीज ही है नहीं, कोई कहते बस रब रब भी नहीं सारी दुनिया बनाई है। कुछ विद्वाना का विचार है कि दुनिया ने रब बनाया। भाई ठीक आपो अपने विचार ने, हां जी, कोई भावनावां नाल चलता है, कोई साइंस नाल फिजिक्स नाल चलता है, ते हर एक नू हर एक दा जिहड़ा मतलब की विचार है वह मुबारक। मैं अपने जिहड़े मन दे हाव भाव है ना वह पेश करन लगा के रब्बा सोहणिया आ सामणे आ, लुक लुक के ना जिंद तड़पा, आ विचोले अपने करके लांबे, आ सीधी अख नाल अख मिला, विचोले अपने करके लांबे, सीधी अख नाल अख मिला, और रब्बा सोहणिया सामणे आ। तेनू कहदा डर है किसे तों, लुकण वाली कहड़ी गल है इहदे विच, ना तू जल विच ना तू थल विच, पर थां थां तेरे फंदे ने। भाई ना तू जल विच ना तू थल विच, थां थां तेरे फंदे ने, तेरे ना

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

0: तेरा डांग उस डेरा
1: जट कलाई बथेरा
0: तेरा डांग उस डेरा
1: जट कलाई बथेरा
0: किथों लाएगा मराड़ा वाले मान के हजेरा
1: मीना संग जट तो तू कुछ मंग

0: ना होर कोई काम नहीं तेनू, सारा दिन दारू पी जाना है, नाले गाने सुनी जाना है, कोई घर का भी ख्याल कर लिया कर, एक कलैनी किस दिन तेनू लै डुबोगी।
1: तेनू की पता है जाते ना दोनों चीजा दे ता ज्यौंदा है, एक गाना ते दूजी दारू।